जसले पाथौ नेपाल सम्बचिन्छ सब पी खुद अनालागा खस्टी थोरेडियो नेपाल ख अन्य नादिस जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामी छाने सीमा हठ्या त कूटनीतिक माध्यम नङ्केको धयादिगुदु यानो एङ्का भारत भ्रमण पुहङका मिग नेपाली हाँ छायाको छोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले गोसागको पत्रकार मुज्या सभापति लामी छाने सीमा नापाया हठ्या संवेदनशील जुगुनी वार्ता भारतीय जनता भाजपा या पुन भारत भ्रमणे छाया डीमा लामी छाने भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गृहमन्त्री अमित शाह विदेश मन्त्री एस जयशंकर नापाया उच्च पदस्थ मनुत नापा नाप्लाना नेपाल यहाँ झागु ख लेहा झागु झोले सभापति लामी छाने कनेक्टिभिटी निसे धार्मिक पर्यटक तक्क या विशेषण सल व्याका दिगु ख सभापति लामी छाने कूटनीति या विषयता जिम्मेवार व संवेदनशील कथ थुकेता इनाफेना दिगुदु। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर या पासाया बोने नुगु दिल्ली थेङ्का दिगुदु मिग निसे 24 गते तक भारतीय औपचारिक भ्रमण या नीति वेक मिग नु दिल्ली थेङ्का दिगु ख वेक या त नयाँ दिल्ली दुमा इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय वेक या त नुगु दिल्ली दुगु इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले भारतीय नीति नेपाल कार्यवाहक राजदूत डाक्टर सुरेन्द्र थापा व भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय नापा सचिव मुनु महाबर लसकुस्याना दिगु ख भ्रमण या झोले परराष्ट्र मन्त्री खनाल समकक्षी डाक्टर जयशंकर नापा नाप्लाना दिगु परराष्ट्र मन्त्रालय धागुदु छ वेकल निगु दे दतिया व्यापार लगानी सम्पर्क संचार कनेक्टिभिटी ऊर्जा व जल जनस्तर स्वपुनापा विशेषण सल व्याका दिगु गोसादु परराष्ट्र मन्त्री खनाल भारत भ्रमण पुङका कनेली नेपाली हाँ झाइगु ज्यासुदु। अर्थमन्त्री डाक्टर सोरी मुवागले उदारता नपाउ वैगो आर्थिक दया बजेट आपालम भिङ्कीगु बचम पङ्का दिगुदु नेपाल उद्योग परिसंज्ञा निसोकगु दमुज्या या त मिग ये कख्यागु झोले अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ने अर्थतन्त्र संरचनागत सुधार या नीति सरकार अङ्कुत यानागु व उकी नापा उद्योगी व्यवसाय व स्वपुते पिन्ता नापा इनाप यानागु धया दिला निजी लगाया मा कथे बजेट गुलिखे प्रावधान तयागु जानकारी बिया दिसे नुग चक्कङ्क लगानी या त इनाप याना दिगुदु सरकार ऊर्जा व पूर्वाधार या लाग्या थुगुसिया बजेट पखे गुणात्मक ज्या यागु कुत यानागु यानागु वहे कथम बजेट विनियोजन यानागु जानकारी बिया दिसे अर्थमन्त्री डाक्टर वागले छु पूर्वाधार निर्माण निजी लगाया त न बोती काकेगु योजना निहजकागु धया दिल निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङ दत्ती छानबिन या त निसङ्गु समिति थगो प्रतिवेदन मिग सरकार या त ललहागुदु छानबिन समिति या संयोजक अचितम प्रसाद भण्डारी प्रतिवेदन मिग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नापान ललहाना दिगु ख वङ्गु वैशाख 28 गते पूर्व न्यायाधीश भण्डारी नेतृत्व महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सह न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपाने सदस्य दुगु समिति निसङ्गु ख छानबिन समितिसँग गुरुङ नापा बयान कया प्रतिवेदन दिएको थी व्यवसाय नपा अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार यागु नपाया दोप ल्या धुङकानी गृहमन्त्री सँग राजीनामा बिया दिगु ख वया ल्यु वेक्ल छानबिन या त सरकार नापा समिति दिएको ख सरकार वैदेशिक लजका व्यवसाय व स्वपु दुगु निकाय श्रमिक तेता नियमित अनुगमन या त उजम्बिगु दु विदेशी ज्याना चोपी नेपाली श्रमिक तेगु लजका सम्झौता कथा तलब सेवा सुविधा व सुरक्षित आवास का मधुगु नापाया ख वे धुङकानी प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय व परराष्ट्र मन्त्रालय या त पौचो या नियमित अनुगमन कार्यान्वयन याकेगु नीति उजम्बिगु ख पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकार या ध्यान सुशासन लेनिगु याना दे विकास या मागु धया दिगुदु वङ्गु फागुन 21 गते पुवङ्गु प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विषय या नीति अध्ययन या छिङ्गु धया दिगुदु निर्वाचन आयोग मिग या गोसागको केन्द्रीय समीक्षा कार्यशाला या उल्लेख याना दिसे वेक्ल निर्वाचन तालागुली तत्कालीन सरकार निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय संचार कमिना पाया आपाल पाला दुगु नेथना दिसे शुभदेशना दिल भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क विहीन निजाम

अति कर्मचारी या त सोनु दुने हाजिर या त उजम बिउसे हाजिर मजुसा कारवाही प्रक्रिया निज्याकेगु ख्यासो बेगुदु मन्त्रालय मिगो छगु सूचना पिताछे अध्ययन विधा वा असाधारण विधा नपाए अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना निजामती वा अध्यावधिक मजुपे कर्मचारी या त सोनु दुने अनिवार्य कथा थगु अभिलेख अध्यावधिक या के त इनाफ या न तगुदु मन्त्रालय आयोग सचिवालय वा केन्द्रीय स्तरीय कार्यालय या त थगु निकाय संथिति इले अध्ययन विधा व असाधारण विधा स्वीकृत जुपी कर्मचारी तेगु धल विधा ई नङ्के धुङ्का नि न कर्मचारी हाजिर जुगु वा मजुगु नापा मेगु धलया राष्ट्रिय किताबखाना निजामती नापा समन्वयना एकिन या त व सुनु दुने अभिलेख अध्यावधिक या के त सूचना इनाफेना त गुदु कर्णाली प्रदेश सरकार वैगो आर्थिक दह 2083-84 नीति व ज्याजो सर्वसम्मति पारित अगुदु कर्णाली प्रदेश निकगु कार्यकाल च्याकगु अधिवेशन एमिगसँग च्याकगु बैठकसँग प्रदेश सरकार नीति व ज्याजो सर्वसम्मति पारित अगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल झिगु भाषा साहित्य व संस्कृति झिगु थगुए मसिका अले गौरवीय दसु लुमङ्के मजु धया दिगुदु यु कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ या सचिव झिङ्याक गु बुदि या लसत्या मिग गोसा गगु ज्यासो या त कगाना दिसे वेक्ला साहित्य सिर्जना मुख भावना अभिव्यक्ति जक मजुसे समाज या त चेतनशील जागरूकको संवेदनशीलदेखिको महत्व जागु माध्यम जुगु धया दिगु ख उपराष्ट्रपति राम साय प्रसाद यादवमा आयुर्वेद योग व ध्यान ध्यान जागु परम्परागत नापा प्राचीन वास पद्धति या त आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली नापा स्वाना अफुगु कथन दीर्घकालीन तक लेङ्केगु याना हेजा किता इनाभ्याना दिगुदु किफली त्रिभुवन विश्वविद्यालय लागा मिग गोसागु आयुर्वेद योग तथा ध्यान पाखे स्वास्थ्य क्षय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ गोष्ठी या उलेजयाना दिसे वैक्लाङ योग पाखे जीवनशैली वैगु लुए डिकेगु ध्यानसँग मानसिक शान्ति तनाव व्यवस्थापन र सामाजिक सद्भाव प्रवर्धन एक भली ठेनीगु भलसा पङ्का दिगु ख कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम हाठ्या जेङ्केगु ल कानुन बी धैगु भाषा बोलङ्के मागुली ब बिया दिगुदु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मिग येले गोसा गोगु निकगु कानुन अधिकृत तक्क या मुजा वेक्ल उलेजा ज्याझु या त कघना दिसे न्याय सेवा दुनिया कानुन समूह व कानुन मन्त्रालय राज्य सत्ता सञ्चालन या नेपु जुगुले ज्या याइबले कानुन हाठ्या बोलङ्की मखु बरु कानुन हिका हाठ्या नङ्किगु लकस बी धैगु ख सकसिन लुमङ्के मागु धया दिला मन्त्री गौतम सकल नेपामी याता कानुन विशेष जानकारी बिता मनुतेगु पहुँच थेङ्केगु कथन ज्यायागु नापा बचा बिया दिला कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी जलवायु परिवर्तन या हाठ्या दथ्यु आर्थिक समृद्धि व लकस संरक्षण नाप्नापा न्याज्याके मागु ध्याया दिगुदु विश्व वातावरण दिवस या लसत्या गोसागोगु ज्याजो या त वैक्ल समृद्ध भविष्य लिदासा जलवायु नापा प्रकृति मैत्री विकास थैगु नारा नेपाया सेनलाईगु विकास लपु या त न्याज्याकीगु ध्याया दिल सभामुख डोलप्रसाद अर्याल नापाया पुचसँग कञ्चनपुर या दोधारा चाँदनी देकाचङ्गु सुक्खा बन्दरगाह या ज्याया प्रगति या विशेष जानकारी कया दिगुदु सभामुख अर्याल व राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल कञ्चनपुर या तिथि लागाया त स्वेगु झोले दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह या प्रगति या विशेष जानकारी कया दिगु ख भारत सरकार या प्राविधिकको आर्थिक ग्वाली सन्तेकाचङ्गु सुक्खा बन्दरगाह लागा पखा देखेगु आवास देखेगु नापा मलेरिया नाले तान देखेको नापाया ज्याज्या चङ्गु दु निगु अर्ब सुइन हेगु करोड भारतीय धेवा सन्देका चङ्गु सुक्खा बन्दरगाह सुइला दुने पुङ्के धुङ्के मागु सहमति दुगुली बन्दरगाह या आतक ज्या चिन्च्यागु प्रतिशत पुङ्गु नापा जानकारी बिगु ख सूचना तथा संचार मन्त्रालय सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था खनेदया चोङ्गु धागो आर्थिक अनियमितता प्रगतिगत कमजोरी व वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन नापाया विशेष अध्ययन नापा छानबिन या त समिति निसङ्गुदु मन्त्रालय थिति निकायसँग लागु उजुरी महालेखा परीक्षक कार्यालय प्रतिवेदन व सार्वजनिक स्वपुतैपि विषय तेता क घाना लिधंसा देख स्वतन्त्र व तथ्य परक लिधंसा नीति समिति निसङ्गु धागुदु इन्जिनियर डाक्टर आवास
विकास मास्के या संयोजक निशंगु समिति छ उमेश रूपा खेती टीकाराम कार्की नवीन कुमार मिश्र पी दुज चुनादी गुदु मन्त्रालय कथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था थगु च्यानल तेके भू उपग्रह पाके प्रसारण यायता विदेशी सैटेलाइट ब्यान्ड विथ सेवा प्रदाय कम्पनी तन्नापा सन् 2002 निसे आतक मड्डीक भाडा सम्झौता याना वया चोङ्गु वो भाडा त वो सम्झौता के इले इले च्यानल तनेगु स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन एसडी स हाई डेफिनेसन एसडी स हिकेगु पूरक सम्झौता याइगु वो उपकरण यागु नापा या कोछिना त खे नियसथना वया चङ्गुदु मन्त्रालय थु फुक विषय अध्ययन याना नि छनु दुने सुझा नापा या प्रतिवेदन दुत बिता कार्यादेश नापा या समिति नि सङ्गु ख सम्पत्ति छानबिन आयोग तोके यागु फुक पदाधिकारी मनु तेसा थोए जेठ मसान्त दुने थगु सम्पत्ति या धल लल ह्याइगु भलसा कागुदु सार्वजनिक सेवा पदे दुपी प सेवा निवृत्त जुपी वा चिलावने धुङ्क पि मनु तेसा थगु थप नहे प्रतिवेदन वा हुलाक वा आयोग या इमेल पाखे धल व उजुरी लल या फैगु व्यवस्था याना थगुदु आयोग 2048 निसे 2083 साल तक या छुन दुने सार्वजनिक पद यापी मनुतेसा पदीय दुरुपयोग याना अस्वाभाविक सम्पत्ति मुङ्कगु खने दुसा उजुरी याना छानबिन प्रक्रियासँग ग्वाली यापी सम्बद्ध सकल पक्ष दुथि इनाफ याना तगु ख आदेश पिने बुख चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ वैगु वाले कोरिया या राजकीय भ्रमण याना दिगु जुगुदु सन् 2019 थुके नापाङ्गो खुसी या त सङ्गुथो भ्रमण या त चिन प्योङयाङ नापा या नापाङ्गो प्रभाव रणनैतिक स्वापु डिसी लाके कथा कया सोया चङ्गुदु चीन व उत्तर कोरिया या सार्वजनिक चीन व उत्तर कोरिया सार्वजनिक यागु जानकारी कथा सि सोमबार निसे मङ्गलबार तक उत्तर कोरिया या भ्रमण याना दिगु जुगु ख वेकया लिपाङको भ्रमण जुन 2019 जुगु ख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समूह या विश्लेषक विलियम याङ या कथा रुस नापा उत्तर कोरिया या स्वपु तब्याना चङ्गु इले चीन सिया भ्रमण पाखे प्योङयाङे थगु प्रभाव हान परिस्थाय यायता व उत्तर पूर्वी एसिया सन् थगु रणनीतिक बल्ला के त सोया चङ्गु थागुदु सिया भ्रमण बेजिङ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नापान जुगु उच्चस्तरीय नाप्ला ज्याजो लिपा जुइता सङ्गु ख थुकियाता चिन क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सञ्चालन थगु भाला सेलनाकी गुकुतिया कथा सोया चङ्गुदु आ मौसम जानकारी थौ कोशी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश नापा देया हिमाली व पहाडी लागाया छुन थासे व तराई लागाया छगुनिगु थासे वा वैगु सम्भावना कुबिगुदु तराई लागाया छुन थासे क्वागु फे वैगु न सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापु दुसा उङगु निपे घौस ये सोनि गया क्वाज सुइगु फुटी छगु डिग्री सेल्सियस दति चोङगु दुसा थौ निने ये सोनि गया क्वाज नि गुगु निसे सुइ छगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु डुकुमा दु थौ ये सोनि गले सुतसिया न्याता इजुया निगु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलन हेता इजुया प्यङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेनादिसा शुभ

रेडियो नेपाल ठिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल कानून निर्माण करैत काल तीन तहक सरकार बीच समन्वय एवं सहकार हेबाक बात पर जोर देलनि अछि। अन्तर्व्यवस्थापिका मंच टीकापुरमे आइ आयोजन कयल गेल अन्तर्व्यवस्थापिका सम्मेलनमे ओ संहिता कार्यान्वयनमे संघीय संसद आ प्रदेश सभा बीच प्रभावकारी रूपमे समन्वय सहयोग आ सहकार हेबाक बात बतौलनि अछि। कानून निर्माण होइत काल लक्षित वर्गकेँ केन्द्रमे राखल जेबाक सभामुख आर्याल जोर देलनि। कानूनके कार्यान्वयन कयल जेबाक वर्ग कानून निर्माण भेलाक बाद मात्र जानकारी पायब कार्यान्वयनमे चुनौती देखल गेल कहैत ओ लक्षित समूह सङ्ग समन्वय आ सहकार कऽ मात्र कानून निर्माण कयल जेबाक बात बतौलनि। सभामुख आर्याल संहितासँ सिंह दरबारक अधिकार गाम गाममे पहुँचायब कहलाक बावजूदो ई अधिकार एखनो सिंह दरबार बाहर नहि जा सकल बतौलनि अछि। एखनो हमसभ जनताके देल जायवला अधिकार गाम गाम धरि नहि पहुँचा सकल छी, ओ कहलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीक सभापति रवि लामी झा ने युग द्वारा देल गेल अभिभारा पूरा करबाक लेल सब गोटे धैर्य त्याग आ समर्पण देखाओल जेबाक बात बतौलनि अछि। आइ आ काल्हि होमय जा रहल पार्टीक जिला अधिवेशनक सन्दर्भमे ओ सामाजिक सञ्जालमे हमसँ हमरा सबमे रूपांतरण हेबावला आयल बात बतौलनि अछि। पछिला जनमतके आओर विस्तार करबाक लेल आ राजनीतिके सुसंस्कृत पारदर्शी तथा जनमैत्री बनेबाक लेल हमरा सबके सब गोटे धैर्य त्याग आ समर्पण देखायल जेबाक चाही, सभापति लामी झा बतौलनि अछि। अधिवेशन आ महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनके प्रक्रिया मात्र नहि भेल जनबैत ओ महाधिवेशन प्रक्रिया पार्टी जीवन विधि अभ्यास आ स्वस्थ परम्परा निर्माण करबाक अवसर भेल बतौलनि अछि। एहिसँ हमरा सभक अगला यात्राके स्पष्ट दिशा निर्देश करत, ओ कहलनि। रासपाक आइ 37 आ काल्हि 29 जिलामे अधिवेशन भऽ रहल अछि। रासपाक पहिलका महाधिवेशनक प्रक्रिया अन्तर्गत वार्ड आ पालिका तहक अधिवेशन सम्पन्न भऽ चुकल अछि। पार्टीक सर्वोपरि हितक लेल हरेक तहमे सक्षम ईमानदार आ जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहल उल्लेख करैत सभापति लामी झा ने संवाद सहमति आंतरिक निर्वाचन सन लोकतांत्रिक विधि अपनाकर नेतृत्व चयन कयल जायब हमरा सभक संस्कार रहल बतौलनि अछि। लोकतांत्रिक प्रक्रियासँ पार्टी आओर मजबूत आ परिपक्व बनैत जेबाक हुनक कथन अछि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा देश नया राजनीतिक संस्कार दिस अग्रसर भेल कहैत मंत्रालय तथा सरकारी निकाय में होबय वाला सेटिंग विकृति आ बिचौलिया तंत्र के प्रभाव अंत होइत गेल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपाक नुआकोटक प्रथम जिला अधिवेशन उद्घाटन समारोह के आइ संबोधित करैत ओ नागरिक सेवा प्रवाह के भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी उत्तरदायी बनेबाक दिस सरकार काज कर रहल बतौलनि। ओ राजनीति कोनो व्यक्ति विशेष के स्वार्थपूर्ति करबाक वा ककरो पद पर पहुँचबाक माध्यम नहीं भ देश के सही दिशा देबयवला साधन हेबाक धारणा व्यक्त कयलनि। विकास निर्माणक काज में कोनो क्षेत्र वा समुदाय के विभेद नहि कयल गेल उल्लेख करैत ओ विकास में सभक समान पहुँच सुनिश्चित करबाक प्रणाली निर्माण में सरकार केन्द्रित रहल बतौलनि। शक्ति पहुँच आ प्रभावक आधार पर बजट वाण फाण करबाक विगत के गलत अभ्यास अंत भेल कहैत संचार मंत्री तिमिल सिन्हा आम निर्वाचन के क्रम में मतदाता संग कयल गेल प्रतिबद्धता पूरा करबाक उद्देश्यक संग सरकार आगू बढ़ रहल बतौलनि। ओ सरकार आ सत्तारूढ़ दल नागरिकक आकांक्षा शिकायत आ अपेक्षा के केंद्र में राखिकऽ काज कर रहल उल्लेख कयलनि। संचार मंत्री तिमिल सिन्हा सरकार के और प्रभावकारी बनेबाक लेल सब पक्षक रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहल चर्चा करैत सत्तारूढ़ दलक जिला अधिवेशन में आग्रह आ पूर्वाग्रह त्याग कऽ सहकारक वातावरण बनेबाक आग्रह कयलनि। स्वास्थ्य आ खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता हाल बाजार में अभाव देखल गेल औषधिक आपूर्ति तथा व्यवस्थापन के सहज बनेबाक निर्देशन देलनि अछि। औषधि व्यवस्था विभाग अनुगमन पश्चात ओ कैंसर सहित औषधिक अभाव नहि होमय देबाक लेल निर्देशन देलनि। ओ एखन धरि औषधिक आपूर्ति वितरण के अनुमतिक लेल निवेदन पेश कयल मुदा अनुमति नहि पाओल कंपनी के स्थलगत निरीक्षण का प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक निर्देशन देलनि। संगे मंत्री मेहता विभागक नियमन क्षमता वृद्धि करबाक लेल सहयोग करबला आ करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। ओ विभाग के प्रभावकारी बनेबाक लेल तत्काल कयल जायवला सुधारक हेतु आवश्यक स्रोत साधन जनशक्तिक विवरण अविलंब पेश करबाक आग्रह ओ करैत निर्देशन सेहो देलनि अछि।
मन्त्री मेहता सरकारसँग निःशुल्क वितरण कयल जायवला औषधि आ स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध कराओल जायवला औषधिक गुणस्तर परीक्षणके जोड़ देवासन आवश्यक व्यवस्थापन करबाक हेतु सम्बद्ध पक्षके निर्देशन देलनि। विभागक निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड़गी विभागक काम कार्यवाही सम्बन्धमे जानकारी करौने छलथि। तात्कालीन नेकपा माओवादी सशस्त्र विद्रोही द्वारा चितवन मारी के बादर मोढ़े खोला में कराओल के दर्दनाक बस विस्फोट के आई 21 वर्ष पूरा भेल अछि। माओवादी सशस्त्र द्वंद्व कालक सबसे विभत्स घटना मध्य एक मानल जायवला ई घटना से दर्जनों परिवार के शोक में डूबौने छल, जकर पीड़ा एखनो धरि ओहने ताजा रहल अछि। विक्रम संवत 2062 साल ज्येष्ठ 23 गते माड़ी के बगही बस पार्क से भरतपुरक लेल छूटल यात्री वाहक बस बादर मुढ़े खोला निकट पहुँचला पर शक्तिशाली विस्फोट भेल छल। बस भीतर आ छत में मिलाकर करीब 110 गोटे यात्री सवार रहल छल। भिनसर लगभग 8 बजे भेल विस्फोट में तत्कालीन शाही नेपाली सेनाक 3 जवान सहित 38 गोटे घटनास्थल पर मृत्यु भेल छल आ 75 गोटे घायल भेल छल। घटना पश्चात घायल मध्य के किछ के उपचार करा रहल आ भेलाक बावजूदो विस्फोट से पड़ल शारीरिक मानसिक आ सामाजिक असर एखनो ओहिना रहल देखल गेल अछि। घटनाक लगभग एक दशक बितलाक बावजूदो तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड आ पीड़ित पक्ष बीच 2074 साल अगहन 17 गते विभिन्न विषय में सहमति भेल छल। सहमति अनुसार मृतकक आश्रित मध्य काज कर नहीं सकवला के रोजगारी, काज कर सक नहीं वाला के आश्रित मध्य काज कर सकवला के रोजगारी, काज नहीं कर सकवला के जीवन वृत्ति तथा बाल बालिका के निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करबाक लगाइत प्रतिबद्धता आ सहमति भेल जनाओल गेल छल, मुदा ई सहमति सब पूर्ण रूप में कार्यान्वयन नहीं भ सकल पीड़ित पक्षक शिकायत रहल अछि। बादर मुढ़े घटना के कईसम स्मृति दिवस के अवसर पर आई भिनसर बादर मुढ़े स्मारक क्षेत्र में सौर सफाई तथा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन कयल गेल। समितिक संयोजक मुक्ति न्यूपाने बतौलनि, कार्यक्रम में घटना में जान गुमनिहारक स्मरण करते श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। दू दशक से अधिक समय बीत गेलाक बावजूदो बादर मुढ़े विस्फोट के स्मरण मारीवासी के लेल केवल एकटा इतिहास नहीं भाक पीड़ा क्षति आ न्याय के निरंतर खोजी के प्रतीक बनकर रहल अछि। चारिम संस्करण के काठमांडू कॉलिंग साहित्य महोत्सव आई से ललितपुर में शुरू भेल अछि। सीमा पर परिवर्तनशील विश्व में दक्षिण एशियाली साहित्य नामक नारक संग शुरू भेल महोत्सव में दक्षिण एशियाली देशक लेखक, कलाकार, फिल्मकर्मी, संगीतकार, कूटनीतिज्ञ आ बुद्धिजीवी के सहभागिता रहल अछि। महोत्सवक उद्घाटन करैत पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की स्वयं केवल पूर्व प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधानमंत्री मात्र नहीं भ एक साहित्य अनुरागी सेहो भेल बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री कार्की अपन साहित्यिक यात्रा के स्मरण करते सन 1990 के जन आंदोलन के क्रम में दू मास के जेल जीवन में ओहिठाम महिला बंदी के पीड़ा आ भोगाई के निकट से देखलाक बाद स्वयं कारा नामक उपन्यास लिखल बतौलन। यशस्वी पुस्तक प्रतिष्ठानक अध्यक्ष तथा महोत्सव निर्देशक रंजना निरौला साहित्य केवल शब्द आ पुस्तक में सीमित नहीं रहल चर्चा करैत ऐसा विचार संस्कृति स्मृति संवेदना आ मानवीय संभावनाक साझा उत्सव मनेबाक अवसर प्रदान करबाक धारणा रखलन। महोत्सव में समूहगत छलफल, कविता वाचन, सांगीतिक प्रस्तुति, लेखक संग अंतरक्रिया, पुस्तक विमोचन, कार्यशाला, सांस्कृतिक साथ तथा अंतर्देशीय साहित्यिक आ सहकार्य कार्यक्रम सेहो आयोजन हेबाक क्यूरेटर रश्मि रंजन परीरा जानकारी देलनि। महोत्सव में गायिका इला अरुण, लेखक प्रतिभा राय, अभिनेता तथा लेखक पीयूष मिश्र, लेखक एवं फिल्मकर्मी राजशेखर, आध्यात्मिक व्यक्तित्व आचार्य प्रशांत सहित सहभागी छथि। महोत्सव के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर वासुदेव त्रिपाठी, डॉक्टर मीना वर्मा, ज्योतिषिका गांगुली, विश्वजीत दासगुप्ता, सविता गौतम दहाल, भवानी खतिवरा, जयराम तिमिल सिन्हा आ दीपेंद्र तिमिल सिन्हा के सम्मान कयल गेल छल। मध्य प्रदेश सरकारक विकास खर्चक दर बहुत न्यून रहल अछि। प्रदेश सरकार विनियोजन कयल कुल बजट के 19.4% मात्र खर्च भेल तथ्यांक अर्थ मंत्रालय सार्वजनिक कयलक अछि। चालू आर्थिक वर्षक लेल विनियोजित 46,98,33,51,000 मध्य 21 गते धरि 9,11,95,75,000 मात्र खर्च भेल मध्य प्रदेशक अर्थ मंत्रालय जानकारी देलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कानून निर्माण करते समय तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक होने पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने दिया जोर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जिला अधिवेशन शुरू। युग द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी से धैर्य और त्याग दिखाने की पार्टी सभापति रवि लामिछाने की अपील। शक्ति पहुंच या प्रभाव के आधार पर बजट बांटने की पुरानी गलत तथा समाप्त हो चुकी है, सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमलसिन्हा का कथन। और अमेरिका द्वारा ईरानी ड्रोन निष्क्रिय किए जाने के बाद ईरान ने कुवैत और बहराइन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। अब समाचार विस्तार से। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि कानून निर्माण करते समय तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग होना आवश्यक है। अंतर व्यवस्थापिका मंच द्वारा आज टीकापुर में आयोजित अंतर व्यवस्थापिका सम्मेलन में सभामुख अर्याल ने कहा कि संघीयता के क्रियान्वयन में तीनों तहों की सरकारों के बीच ऐसा समन्वय और सहयोग होना चाहिए जिससे एक दूसरे के कानूनों में टकराव न हो। उन्होंने कहा कि जिन वर्गों को कानून लागू करना होता है उन्हें कानून बनने के बाद ही जानकारी मिलने से क्रियान्वयन में चुनौती आती है, इसलिए लक्षित समूह के साथ समन्वय और सहयोग करके ही कानून निर्माण किया जाना चाहिए। सभामुख अर्याल ने यह भी कहा कि संघीयता का उद्देश्य सिंह दरबार की शक्ति को गांव-गांव तक पहुंचाना था, लेकिन वो अधिकार अभी तक पूरी तरह सिंह दरबार से बाहर नहीं जा सका है। इसी सम्मेलन में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल ने कहा कि संघीय सरकार द्वारा आवश्यक कानून न बनाए जाने के कारण प्रदेश और स्थानीय तहों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों के साथ प्रदेश और स्थानीय तह को काम करने का उचित वातावरण बनाना आवश्यक है। ये सम्मेलन कल संपन्न होगा जिसमें संघीय संसद के दोनों सदन और सातों प्रदेश सभाओं के सभामुख सहभागी होंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि युग द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी को धैर्य त्याग और समर्पण दिखाना चाहिए। आज से शुरू हुए पार्टी के जिला अधिवेशन के अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि रासपा का लक्ष्य केवल वैकल्पिक शक्ति बनना नहीं है बल्कि देश का नेतृत्व करने में सक्षम एक राजनीतिक शक्ति बनना है, इसलिए पार्टी को और अधिक व्यापक समावेशी और मजबूत बनाना आवश्यक है। सभापति लामिछाने ने कहा कि अब समय मैं से हम में बदलने का है। उन्होंने संगठन विस्तार के दौरान ये संकीर्ण चिंता छोड़ने की बात कही है, मैं रहूंगा या नहीं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की समझदारी और पार्टी सदस्यों के समर्पण से आज की सफलता संभव हुई है। पुरानी पीढ़ी द्वारा रखी गई नींव पर नई पीढ़ी की ऊर्जा और सक्रियता ने पार्टी की यात्रा को यहां तक पहुंचाया है। सभापति लामिछाने ने यह भी कहा कि अधिवेशन और महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये पार्टी जीवन विधि अभ्यास और स्वास्थ्य परंपरा निर्माण के अवसर हैं। रासपा के आज 37 और कल 29 जिलों के अधिवेशन हो रहे हैं जबकि वार्ड और पालिका स्तर के अधिवेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमलसिन्हा ने कहा है कि देश नए राजनीतिक संस्कार की ओर बढ़ रहा है, इसलिए पुराने गलत राजनीतिक तरीकों को दोहराने की अनुमति सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को नहीं है। रासपा धादिंग के प्रथम जिला अधिवेशन उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी व्यक्ति या समूह के स्वार्थ पूरा करने, बिचौलिया तंत्र को संरक्षण देने या सीमित लोगों के हित के लिए संचालित होने वाली संस्था नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक सेवा प्रवाह को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने पर केंद्रित है। एक अलग प्रसंग में संचार मंत्री तिमलसिन्हा ने कहा कि दूर संचार सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता सुधार सरकार की प्राथमिकता है और अगले एक वर्ष के भीतर नेटवर्क सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार लाने का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। आज ही नुआकोट में रासपा के प्रथम जिला अधिवेशन उद्घाटन समारोह में भी उन्होंने कहा कि मंत्रालय और सरकारी निकायों में होने वाली सेटिंग की विकृति और बिचौलिया तंत्र का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक सेवा प्रवाह को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। शक्ति, पहुंच या प्रभाव के आधार पर बजट बांटने की पुरानी गलत प्रथा समाप्त हो चुकी है और सरकार आम चुनाव के दौरान मतदाताओं से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलीकॉम को 4G।

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नेपाल भारत संबंधों को नए स्तर से और विस्तार और सुदृढ़ करने के लिए सरकार तैयार है। भारतीय चैनल NDTV के साथ आज एक विशेष संवाद में उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा होने के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझा और सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बहुआयामी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और विस्तार देने की आवश्यकता है। मंत्री खनाल ने कहा कि व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रविधि और संपर्क नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में नेपाल भारत के सहयोग, निवेश और साझेदारी की अपेक्षा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल में रेल मार्ग विस्तार, शैक्षिक संस्थानों के विकास और तकनीकी विस्तार पर जल्द ही ठोस सहमति बनने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि बांग्लादेश को नेपाल की बिजली निर्यात के लिए भारत का सहयोग मिलेगा। इसी बीच भारत के आधिकारिक दौरे पर रहे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल और भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावाले के बीच आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। भेंट में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा पार्टी और जनता संबंधों को और गहरा बनाने पर चर्चा हुई। काठमांडू महानगर पालिका ने शैक्षिक सत्र 2083-84 के लिए कक्षा 11 और 12 में छात्रवृत्ति के लिए पहली मनोनयन सूची मैचिंग लिस्ट से 3,735 विद्यार्थियों के नाम प्रवेश के लिए सिफारिश किए हैं। छात्रवृत्ति चयन परीक्षा से योग्यता क्रम की अंतिम सूची में प्रकाशित नामों के आधार पर प्रवेश के लिए सिफारिश की गई है। ये जानकारी परीक्षा समिति के संयोजक नमराज ढकाल ने दी। उन्होंने बताया कि पहले प्रकाशित अंतिम योग्यता क्रम विद्यार्थियों द्वारा आवेदन के समय चुने गए विषय और शिक्षण संस्थान की प्राथमिकता के आधार पर सामान्य तथा आरक्षण और समूहगत रूप से निर्धारित संख्या के अनुसार नाम सिफारिश किए गए हैं। मनोनयन में शामिल परीक्षार्थियों को मनोनयन पत्र लेकर इसी जेठ 27 गते तक निर्धारित शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा। ये जानकारी परीक्षा समिति के संयोजक ढकाल ने दी। इस वर्ष महानगर क्षेत्र के 145 शिक्षण संस्थानों के लिए 4,857 सीटें निर्धारित की गई है। पहले चरण में मनोनयन पाए विद्यार्थी यदि निर्धारित समय में प्रवेश नहीं लेते हैं तो खाली रहने वाली सीटों पर बाकी विद्यार्थियों की योग्यता क्रम और शिक्षण संस्थान की प्राथमिकता के आधार पर 28 गते के बाद दूसरी चरण की मनोनयन सूची प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने हाल में बाजार में देखी जा रही दवाओं की कमी को दूर करने तथा उनकी आपूर्ति और प्रबंधन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। औषधि व्यवस्था विभाग के आज के निरीक्षण के दौरान मंत्री मेहता ने कहा कि जिन कंपनियों ने दवा आपूर्ति और वितरण अनुमति के लिए आवेदन दिए हैं लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है उनका स्थलगत निरीक्षण कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि विशेषकर कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं की कमी ना हो। मंत्री मेहता ने सरकार द्वारा निशुल्क वितरित की जाने वाली दवाओं तथा स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उपलब्ध औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक व्यवस्थापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वैदेशिक रोजगार में आकर्षक वेतन का प्रलोभन देकर ठगी करने के आरोप में पुलिस ने काठमांडू से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में काठमांडू महानगर पालिका 3 निवासी लक्ष्मी थापा कार्की और बूढ़ा नीलकंठ 8 निवासी प्रिया बानिया शामिल है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका द्वारा ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को निष्क्रिय किए जाने के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान द्वारा दागे गए कुछ ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। कुवैत और बहरीन ने सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी है। हवाई और समुद्री मार्गों पर जोखिम की चेतावनी जारी की गई है। वर्तमान स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी जारी है और खाड़ी क्षेत्र में बड़े संघर्ष का खतरा बना हुआ है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कानून निर्माण करते समय तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक होने पर सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने दिया जोर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जिला अधिवेशन शुरू। युग द्वारा दिए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सभी से धैर्य और त्याग दिखाने की पार्टी सभापति रवि लामिछाने की अपील। शक्ति, पहुंच या प्रभाव के आधार पर बजट बांटने की पुरानी गलत प्रथा समाप्त हो चुकी है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा का कथन। और अमेरिका द्वारा ईरानी ड्रोन निष्क्रिय किए जाने के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: फोर जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
3: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन,
4: दूर सुदूर क्षितिजका नेपाली अनुभव शब्द चित्रमा कोर्दै स्वदेशको सम्झना र परदेशको अनुभव सुन्ने सुनाउने एउटा चौतारी कार्यक्रम घर देश परदेश। कार्यक्रम घर देश परदेशमा स्वागत छ। म प्रस्तुता हेमन्त उप्रेती। विश्वव्यापीकरणसँगै यातायात र सूचना प्रविधिको विकासले अझ साँगुरो हुँदै गरेको आजको संसारमा रोजगार, स्वरोजगार, वृत्ति विकास, शैक्षिक प्राज्ञिक उन्नयन, तिनको प्रयोग उपयोग र सुविधामय जीवनको आकांक्षामा मानिस संसारभर फैलिँदो छ। नेपालीहरू मात्र यसमा अपवाद छैनन्। कर्मक्षेत्रमा जहाँ जहाँ रहे पनि स्वदेश र जन्मभूमिप्रति सदा कृतज्ञ रहने नेपाली मनहरूका स्वदेश विदेशका जीवन अनुभवहरू खोतल्ने एउटा प्रयास हो कार्यक्रम घर देश परदेश। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक शनिबार राति 10 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। साथै रेडियो नेपाल online.com र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि यो कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ शेखर ढुङ्गेल। भक्तपुर कटुन्जेमा जन्मी हुर्की शिक्षक र विभिन्न सरकारी संस्थामा जागिरे हुँदै करिब 30 वर्ष अघि अमेरिका पुग्नुभएका ढुङ्गेल केही समय जापानमा व्यावसायिकतामा रहनुभयो। 4 दशकभन्दा अघिदेखि नै गीत कवितामा स्वतस्फूर्त कलम चलाउन थाल्नुभएका ढुङ्गेलका शेखरका सय कविता कहाँ छ मेरो देश, क्षितिज पारीका सपनाहरू, अ ब्युटिफुल जर्नी अफ स्ट्रगल, माटोको सुगन्ध, 100 रुपियाँको नोट र भैरवरी साल लगायत 10 पुस्तकाकार कृतिहरू प्रकाशित छन्। 2063 साल ताकादेखि नै गीती अल्बम आकांक्षा, सम्झना र कुनै दिन प्रकाशन गर्नुभएका ढुङ्गेल गीतकारका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ। जहाजले यो धरतीको जमिन छोड्ने बित्तिकै नेपालीका आँखाबाट टपक्क झरेका आँसुले मन विरगिएको अनुभूति लेख्नुहुने ढुङ्गेल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, साहित्यिक पत्रकार सङ्घ, गीतकार सङ्घ नेपाल, नेपाल अमेरिका गीतकार सङ्घमा संलग्न हुनुहुन्छ। साहित्यिक पत्रकार सङ्घले प्रदान गर्ने व्यथित काव्य पुरस्कारबाट पुरस्कृत सम्मानित ढुङ्गेल स्वदेशका हरेक जिल्ला घुम्न मन पराउनुहुन्छ र अब आय आर्जनमा भन्दा पनि अबको जीवनमा स्वदेशमा रमाउँदै अध्ययन, भ्रमण र सेवातर्फ आफ्नो रुचि गएको बताउनुहुन्छ। त आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ भक्तपुरमा जन्मी हुर्की विगत 20 वर्ष अघिदेखि सपरिवार क्यालिफोर्निया अमेरिकामा रहनुहुने साहित्यकार, लेखक र गीतकारका रूपमा सुपरिचित शेखर ढुङ्गेलसँगको कुराकानी। उहाँ स्वदेश आउनुभएका बेला यो कुराकानी गरिएको हो। एकैछिन एउटा सङ्गीतबाट अघि बढौँ, त्यसबीच कुराकानी जोड्छौँ।